आओ गुरु प्यारे सत्संग जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला वैसाखी का पूर्व ए दीवान इन्हां खुशियां दे विच सजे हन। संगत बड़ी दूर दूर चलकी गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तनहरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवा, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगत। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा की भावना के नाल कि मालका तेरे सन दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हत प्रति आने वाले समय दे विच संगत दे सारे कार्य आप जी ने संवारने हैं। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवार।

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूल उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बोहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाल स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस्तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यह, ताके काल निकट नह। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह च्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जब पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस फुन तीन कहिज। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सभ बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा। करता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ये वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरह प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक थै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुलावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिस

तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माही सुन के जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौजल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम कांडी है विरले केई के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दोस्त खिन माहि बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत

सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुकै सब सोग संतापे।

जे लयन पन्ने पाए वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शामां दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संग जी वडभागी हो जो गुरुदेव जी दी कृपा बख्श दे पात्र बन रहे हो अमृतमई हजूरी विच भावना प्यार सहित बैठ के आप जिया ने भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी उन्हां दे जत्थे पासों अमृत गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ वेला होया है अमृत बाणी की कथा का जो नीता प्रति साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार 22 वारा की कथा आपने प्रारंभ की हुई है। मलार की वार 21वीं वार आप सरवण कर रहे हाँ। अज 8वीं पौड़ी विच्चों पहले श्लोक का पाठ आप जी ने सरवण किया है। दो श्लोक ने दोवें श्लोक तीसरे गुरदेव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के उच्चारण किए हुए ने। पौड़ी साहिब सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की है। अज आप सिर्फ पहले श्लोक की विचार करांगे। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दातार पिता जी ने इस पावन श्लोक विच अजे रहमत बख्शिश की है कि ए भाई ए प्राणी ए गुरसिख ए मित्र तू इस जगत संसार दे विच किसे दा पठाया किसे दा भेजिया आया है वो जो सर्व कला समर्थ है जिस ते हाथ विच सारा कुछ है वो साडा दाता है करता है भुगता है हरता है। उस परमेश्वर परिपूर्ण परमात्मा दी सिफत सलाह विच जुड़ जा उसनु आराध क्योंकि उदे बिना कुछ होर है नहीं सब कुछ उसका ही है सब कुछ उही है। सिर्फ ता सिर्फ तू अपने अंदरों उस माया दे पर्दे नू अज्ञानता दे हनेरे नू परम नू उसकी कीर्ति द्वारा उसकी सिफतो सलाह द्वारा उदी याद द्वारा दूर करना है। है कुछ भी नहीं जो कुछ है वो आप है पर भरम करके अंधेरे करके अज्ञानता करके वखरेवा समझ लिया है जिस करके तू विसर गया भुल गया तेनू पर उसनू चेते करना है सरेवना है आराधना है क्योंकि उदे बिना होर कुछ है नहीं। पर ये सब कुछ उसनू आराधन दा उसनू जपन दा उसनू त्याउन दा भी तेरे कोल बल नहीं तेरे कोल समर्था नहीं। गुरुदेव जी आखते ने पहली गल ते उदा ये त्याउना उदा ये जपना बड़ी सहज दई कर्म है बड़े प्यार दा कर्म है लगाव दा कर्म है। दूसरा गुरु कृपा दी लोड़ है गुरु बख्शिश दी लोड़ है ते तीसरा जिस ते आप रहमत करे परमेश्वर उदी मन विच वसदा है ते जिस दे मन विच वस जांदा है उदियां सारियां चिंतावां दूर कर देंदा है भुलेखे दूर कर देंदा है भरम दूर कर देंदा है ते हर पासे आनंद दा ही स्वरूप प्रतीत हुंदा है। वाहिगुरु आप उन्हां दी गल मनदा है फिर सुनदा है जिहड़े आप वाहिगुरु नूं अपने हिरदे विच वसा लैंदे ने अपनी याद दे पल्ले नाल बन लैंदे ने फिर परमेश्वर उन्हां दा आख्या आप मनदा है आप ध्यान नाल गल सुनदा है। ये गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे ने। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला रसना नूं पवित्र करिए मन बिरतियां एकाग्र करिए प्यार सहित उच्चारण करो जी।

अवनासी पुरख पाया परमेश्वर वो सोभ कंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राह गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत डहल की बेला। इहां काट चल हो हर लाहा आगे बसन सुहेला। आवत घटै तिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए भी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हो हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पा

द्रौपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेशो, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हार तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहाओ नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमूलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उदार, आप तर लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लाका हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पय सबरीन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूरन होय सेवक की सेव, आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तहारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकि गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम।

माता धरत महत दिवस रात दुएदाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया गए।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं चपै।

समितुज कही जय। कोटिंद्रिंद्रा साही सहन गनि जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। त्व सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रया छंद नमस्तुंग काले नमस्तुंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनुपे नमस्तंग अपिखे नमस्तंग अलिखे नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग अगाधे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुवेकय नमस्तंग अनिकय नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग सुके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलासरे नमस्तंग निरासरे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्तजबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारं नमस्तंग कृतारं नमो सर्वतंदे नमो सतवंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहिमे नमस्तंग करिमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व शोकंग नमो सर्व पूकंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो पूग पूगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी चंद त्व प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलिख है अपिख है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजेय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है। भुजंग प्रया छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नाते नमो पान पाने नमो बाद बाते अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे
नमो योग योगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेकीय परमी अपोगी अपुगते नमो योग योगेश्वरं परम युगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे

पासांग नमो पुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्व निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अधो उर्ध अर्धं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं वचेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेराजूर चाचरी चंग जले हैं तले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीस हैं पुजंग प्रचंद अगाध्य बाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग प्रमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा ऋत सिद्धं निवासी चरपट चंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले।

और सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर ततर विराजई अवतूत रूप रसाल नाम ठाव न जात जाक रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूरत अजौन आदशेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदै मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे पेव न जाने जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जानी के जे तात्मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बक्र फिर चतुर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जापी जह जाप आद देवन आद मूरत ताप्यो सबै जी ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सोयम भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग ना तुम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नीत भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन्ना नाव सा जान बाहुए साहन साहू राजान राज भानन भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन कालन पूतांगा पापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा पर नाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजं प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चंदन सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज देश है किया पिज पेश है किया गंज कर्म है किया भंज भरम है किया पिज लोक है किया दित सुख है के अवतूत वर्ण है के बेपूत करण है कि राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है किया सुख वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि वर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है के चित्रंग वहीन के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रेहा के पाक वे वे के गय भूल गय वे के फूल गुना कि साहन साह के कारण कुनिंद के रोजी देहांद के राज रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कलिय के सर्वंग दलिय के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कालिम है के परमं सहिम है
ਕਿ ਅਕਲ ਅਲਾਮੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮੇ ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੇ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੇ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਿਕਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੀਤ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਯੁਕਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸੁਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੁ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸੁਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਗਾਧ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਥ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੀ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੀ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਭਾਤੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੀ ਸੁਸਰਭਾਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛਿਜ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਲਿਖ ਹੈ ਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਢਾ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਚਰਪੜ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵੰਗੰਤਾ ਸਰਵੰਗੰਤਾ ਸਰਵੰਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਧਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਵਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨ ਸੱਤ੍ਰ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ ਨ ਜਾਤੈ ਨ ਪਾਤੈ ਨ ਸਾਕੁੰ ਸਰੀਕੈ ਮਿਤੁ ਅਮੀਕੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀ ਮਹਿਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮੀਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਪਸਹ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਪਾਰ ਛੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜੂ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਂਜੂ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਵਨਾਸ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਅਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤੁਦਾਰ ਜਲਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਪੰਡ ਜਲਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਕੈ ਸਦਾਹੂ ਓਂਕਾਰਾਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿ ਜਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਾਬਾਤ ਅਨਛਨ ਜਗਾਤ ਅਨਰੰਜਬਾਤ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਡਟ ਅਪਾਰ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਟੀਠ ਕਰਮ ਅਨਬ੍ਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਰਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਵ ਭਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਿਆ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਪਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥਪਾ ਥਪੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤੈ ਧਰਣੀ ਤ੍ਰਿਤੈ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤੈ ਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ
निरप नायक है, सर्प पायक है, भव भंजन है, रगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, करता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रया चंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकार, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासं ताम सं शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युत युते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार लंके, नमो वासासे, नमो बांक पंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनाश अकाश अगंज पंज लख पख काल दयाल लेख पे कनाम काम गा टा नाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरा कि नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामी समस्तुल निवासी निरकाम अंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करिमुल रही में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते तू कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हुंते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के भूप पली बिद न्यावत शीश न जात बिचारे हिते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक वसिख वेद पुराण कथेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख पौन आहार जति जतता सब ऐसु विचार हजार के दिखे श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखे शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुनाह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान भजे बिन त्याग जहान निदान श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार बचार रहसार की तार पछैया तोर्थ देश मलिंद मवासन माते विजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सुवेक दिवैया
दानव देव पनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब ताप थपेंगे।

प्रसन्न फिरे जग सत्र सदै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निराधप जौं त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म ही सर्विशन सचिपत अंत फसे जम्फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देही तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बख ध्यान लगायो नाथ फिरियोलिये सा समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सु बैठ कै सही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन लेहु सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरी लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया पुरज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।

जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखानियो। दो हरा

चित्यावे चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख पते बिरद की पैज।

धन धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसों पातशाह की आत्मक जोत साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा तार जियो आप जी ने रहमत कृपालता कीती बख्शिश कीती अमृत वेले दे जागने बख्शे अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर आईया समूह संगतां नूं दर्शन दीदार दे करके नदरो नदरी निहाल कीता आप जी का कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन सुंदर दीवान सजे सजे दरबारा अंदर आप जी की अमृत मई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नित नेम बाणिया दे पाठ होए गरीब नवाज आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां आप जी ने किमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दे योग आप बना लेना सतगुरु जी बेअंत संगतां ने आप जी के पावन पवित्र चरण कमलां दी अमृत वेले हाजरी भरी तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच भेट कीती रहमत करनी समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दरते प्रवान करनियां किरत कमाईयां सफलियां करनियां घरां परिवारां बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरसिखी दी दात विद्या दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करके नवाजना बेअंत संगतां वल्लों मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरिया गईयां सेवावां भेजियां गईयां तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाएं पाउणियां समूह संगत दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान कर लैणियां गरीब नवाज अपने टहलियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु जी काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा करके श्रद्धा भावना सहित अपने दर कर दी सेवा आप लै लैनी गरीब नवाज रहमता करनिया हर मैदान पते बख्शिश करनी सदा अंग संग वर्तना आप जी की कृपा सदका चार पहर रहन सुख भाणी अंदर बतीत हुई है दिन आया है अपने भाणी अंदर सुखमई आनंदमई बतीत करवाना सतगुरु जी इस वक्त दीवाना दी संपूर्णता नूं मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो जी रहमत करो पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके दर आईया संगतां दी गरीब नवाजी करो जी पावन दरबार

0: जी की फतेह। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हौ तिस पह आप वेचाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु प्यार दा सदका मितां प्रति गुरु दरबार दियां हाजरियां भरदे हो। सतगुरु जी कृपा करन सभना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। पावन दीवाना दी संपूर्णता ते सतगुरां ने अमृत वेले दे इलाही जो हुक्म जो फरमान बख्शिश कीते सन, आप जी ने सरवण कीते हन। सोही राग विच धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा पावन शब्द अष्टपदियां दे रूप अंदर दर्ज है। सतगुरु धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी ने समुचे शब्द अंदर जो भाव दस्या है कि गुरु दा सिख, गुरु दा प्यारा, जिसनों परमेश्वर दे दर्शनां दी तांग है, वो दर्शनां दे लई हर कीमत अदा कर सकता है। वो वाहिगुरु दे दीदार लई, अपने गुरु दे दीदार लई, अपने गुरु दे मिलाप दे लई अपने जीवन तक दी बाजी ला सकता है। दुनिया दे हर दुख नू, हर संकट नू, हर मुश्किल नू, हर रुकावट नू वो हस के पार कर लैंदा है। जिहदे अंदर परमात्मा नू मिलन दी तांग होवे, मिलन दी भुख होवे, उस नू वाहिगुरु परमात्मा आप वो रस्ता देंदा है। जिवें किसे इंसान नू प्यास लगी होवे, कोई भुख लगी होवे, तो अपनी प्यास नू, अपनी भुख नू मिटाण वास्ते कोई आहर कर लैंदा है, कोई ढंग लभ लैंदा है, कोई किरत लभ लैंदा है, क्योंकि भुख बड़ी डाढ़ी दुख है। उसनू मिटाण दे लई बंदा कोई ना कोई काम जरूर करदा है, लभदा है, उहदी लोड़ बन जांदी है। जदों कोई भी चीज़ लोड़ बन जाए फिर वह लोड़ दे विच मनुख आप राह कढ लैंदा है। इसी तरह जदों सिख दे मन अंदर यह भावना बन जाए भी गुरु दा दीदार करना, गुरु दे दर्शन करने, संगत करनी ये मेरी लोड़ है, मेरी जरूरत है, जिवें प्यासे नू पानी दी लोड़ है, भुखे नू भोजन दी लोड़ है, इसे तरह सिख नू गुरु दे प्यार दी, गुरु दे दर्शना दी लोड़ है, जरूरत है, तां फिर वो सिख हर मुश्किल विच रस्ता लभ लैंदा है। जे जरूरत महसूस नहीं हुई फिर भावें अनेक सुख दे साधन भी बंदे दे कोल होण, सारा कुछ मुहैया होवे, बंदा फिर भी ना मिलन दे, ना दर्शन करन दे बहाने भाल लैंदा है। ये सब कुछ अपने मन की खेड है। गुरु कृपा करे सिख नू गुरु सदा अपने दर्शन बख्शता रहे, दर्शन परसन बख्शता रहे, अपनी संगत बख्शता रहे, अपना प्यार बख्शता रहे। इनिया बेनतियां प्रवान करनिया। आओ प्यार सहित अमृत बाणी आसा की वार दे कीर्तन भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों सरवण करिए जी। भुला चुका दी खिमा, समूह संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु, वाहिगुरु।

ये बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी राग सूही अष्टपदिया

हो तौ दरगह सुख पाव हो संत हो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज घर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुर मिलहो नवै निद पावहो इन बिद तत बिलोई परम चुकावहो गुरमुख लिव लावहो आत्म ची नहु पाई निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजर किस स्यों करहो बुराई सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी धन धन से जन जिनी कल मह हर पाया जन नानक सद कुरबानी राम कली महला पंजवा आवत हरक न जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुरपूरा पाया तौ उतरी सगल बेयोगनी एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग न व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ सुरग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखौ हर गुणी नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अविगत नाथ अगम धनी

नानक हम तुम गुर खोई है, अंबै अंब मिलोगनी, राम कली महल्ला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधिक सिद्ध न जाने, रत्न कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कै खजाने, अचरज किच कहन न जाई, बसते अगोचर भाई रहाओ, मोल नाही कच करण जोगा, क्या को कह सुनावे, कथन कहन कौ सोझी नाही, जो पेख तिस बने आवै।

भंडारा, ऐसा रस अमृत मन चाखिया, तृप्त रहे आघाई, कहो नानक मेरी आशा पूरी, सतगुर की शरणाई। राम कली महल्ला पंजवा, अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे, जिन बैरी है इहो जग लूटिया, ते बैरी लै बाधे, सतगुर परमेश्वर मेरा, अनिक राज भोग रस माणी, नाओ जपी परवासा तेरा रहाओ, चीत न आवस दूजी बाता, सिर ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहत है स्वामी, एक नाम कै आधारा, पूर्ण हुए मिलो सुखदाई, ऊन न काई बाता, तत्सार परम पद पाया, छोड़ न कत हो जाता, वरन न साकों जैसा तू है, साचे अलख अपारा, अतुल अथाह अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा। राम कली महल्ला पंजवां।

तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मेहमान कलाला। तुम देव हो तिल संक न मानहु, हम पुंच हैं सदा निहाला। हम बारिक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा। हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा। तुम

मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहण न जाए, राम कली महल्ला पंजवां। कर कर काल पखावज नैनहु, माथे वजहर बाबा, करनहु मद बासुरी बाजै, जिहवा धुन आगा जा। निरत करे करमनुआ नाचै, आने घूगर साजा, राम को नृतकारी, पेख पेखन हार दयाला, जेता साज सीगारी। राव आखार मंडली धरन सवाई, ऊपर गगन चंदुआ, पवन विचोला करत अकेला, जल ते ओपत हुआ। पंच तत् कर पुतरा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दुए चर जरे चरागा, चहु कुंड पीतर राखे, दस पातों पंच संगीता, एक है पीतर साथे।

कोई उड़ नील कोई सुपेद, कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बाछ है पिस्त कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महल्ला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करहु बिचारा। एहो तौ चलत भया रहा, अगली किच खबर न पाई। रोवन हार पे ऊठ सिधाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ न मर न जोग। नह बिनसै अबिनासी होग, जो एहो जान हो सो एहो नाहे। जानन हारे कौ बल जाओ, कहो नानक गुर भरम चुकाया। ना कोई मरै न आवै जाया, राम कली महल्ला पंजवा। जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवह, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे इहु विचार। राग राम कली महल्ला पंजवा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पुकार है ना तू मन है, खट पिए का बात बखान है। दस अष्टी मिल एको कहया, ता भी जोगी भेद न लहया। किंकुरी अनूप वाजै, जोगिया मतवारू रे रहा। प्रथमे वसया सत का खेड़ा, तृतीय मह किच भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्ध अर्ध समाया, एक रहया ता एक दिखाया। एक सूत परोए मणिए, गाठी भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न तनिए। फिरती माला बहुविध पाए, खिंचिया सूत ता आई थाए। चहु मैं एक मठ है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, खोजत खोजत द्वारे आया। ता नानक जोगी महल घर पाया, इउं किंकुरी अनूप वाजै। सुन जोगी कै मन मीठी लागै, रहा ओ दूजा। राम कली महल्ला पंजवा, तागा करके लाई थिगली। लाओ नाड़ी सुआ है अस्ति, अंबे काकर डंडा धरिया। क्या तू जोगी गर्भ है परिया।

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे रहाओ। बिन हर सगल निरार्थ काम, सोइना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सूखा, ईहां ऊहां तेरो उजल मुखा, ईहां ऊहां तेरो उजल मुखा, गुर का शब्द जाप मन सुखा, ईहां ऊहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे, किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए, ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार, संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताकै कुर्बान, राम कली महल्ला पंजवां। सिंचै दर्ब देहे दुख लोग, तेरे काज नयवरा जोग, कर अहंकार हुए वरतै अंध, जम की जेवड़ी तू आगे बंद, छाड़ बिडानी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े, माया की माते तै उठ चलना, रात रहो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बारिक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, तृतीया व्यवस्था सिंचे माए, बिरद भया छोड़ चले पछताए, चिरंकाल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुगते बुरी, किसे न बूझै जिन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छड़ावहु छुटकै बंद, बख्श मिलावहु नानक जग अंध, राम कली महल्ला पंजवा। कर संजोग बनाई काच, तिस संग रहो या नाराच, प्रत पारै नित सार सुमारै, अंत की बार ऊट सिधारै, नाम बिना सब झूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, ते सब माया मूठ परानी रहाओ। तीर्थ नहाए न उतरस मैल, कर्म धर्म सब हौ मैं फैल, लोक पचारै गत नहीं होए, नाम बिहूने चल सह रोए, बिन हर नाम न टूटस पटल, सोते शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपै जिस आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, राखन हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुम रह हाथ, जित लाभ है तित लागै स्वामी, नानक साहिब अंतर जामी, राम कली महल्ला पंजवा। जो किछ करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहेले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन मेहमानी, महापुरख का संग भया रहा। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जय राखै सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जह साध पग धरै, तह बैकुंठ जह नाम उचरै, सर्व आनंद जब दर्शन पाईऐ, राम गुणा नित नित हर गाईऐ, आपे घट घट रहया व्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे, नानक कौ गुरु भेटे पूरे, राम कली महल्ला पंजवा। कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनिक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमक हृदय वसै,
हर के नाम की वडियाई, कीमत कह न जाई रहाओ। सूर वीर धीरज मत पूरा, सहज समाद धुन गहर गंभीरा, सदा मुकत ताके पूरे काम, जाके हृदय वसै हर नाम। सगल सुख आनंद अरोग, समदर्शी पूर्ण निरजोग, आए न जाए डोले कत नाही, जाके नाम बसै मन बाही। दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरै चिंद, नानक कौ गुर दिया नाम।

बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियानब बहु चतुराई, मन बिन हर नावै जाय नकाई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टिकाई, राम कली महल्ला पंजवां, संत कै संग राम रंग खेल, आगै जम स्यों हुए न मेल, अहंग बुद्ध का भया विनाश, दुर्मत होई सगली नास, राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म कांड अहंकार न काजै, कुशल सेती घर जाहे पंडित, रहाउ हर का जस निध लिया लाभ, पूर्ण भये मनोरथ साब, दुख नाठा सुख घर है आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, किस जन हुए सगल निदान, संतोख आया मन पूरा पाए, फिर मांगन का ही जाए, हर की कथा सुनत पवित, जिहवा बकत पाई गत मित, जिहवा बकत पाई गत मत, सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन ऊतम भाई, राम कली महल्ला पंजवां, कहु कर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई, तब ओह चरणी आए पई, सुन संत हो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा भेटत उधार, रहाउ जब उसको कोई देवै मान, तब आपस ऊपर रखै गुमान, जब उसको कोई मन पर हरै, तब वह सेवक सेवा करै, मुख भेरावै अंत ठगावै, इकत ठोर वह कहीं ना समावै, इकत ठोर वह कहीं ना समावै, उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड, जो मांगै सो भूखा रहै, इस संग राचै सो कछु न लहै, इस त्याग सत संगत करै, वडभागी नानक ओह तरै, जो मांगै सो भूखा रहै, इस संग राचै सो कछु न लहै, इस त्याग सत संगत करै, वड भागी नानक ओह तरै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका निता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण करदे हो, नाल करदे हो। गुरु कृपा करे सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके निवाजन जी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां नूं परिवारां नूं सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शन योग ने, भुलाना चितार दे प्यार सतफते गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

सतगुरु महाराज कृपा करन, हर साल ये शहीदी दिहाड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर, कैसे हिरदे सन इना दे, माता साहिब कौर, माता सुंदरी जी, माता जीतो जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। ऐसा ना हो साल लंघ दे जान पर साडा जीवन ना बदले, गुरु दे होर भी नेड़े होइए, सुवास सुवास जपिए, सतनाम श्री वाहेगुरु। फतेहगढ़ साहब चमकौर की गड़ी नूं हमेशा अपने अंदर वसा के रखिए, वो साडे वास्ते यूनिवर्सिटी है, सिक्खी का स्कूल है। आओ बड़े प्यार नाल कीर्तन की सेवा भाई साहब जी, भाई हरप्रीत सिंह जी हाजरियां भरनगे। बेअंत पुल चुक दी खिमा असीस देव, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत वड्डा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना है। असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाने वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिरी होर भर के बहुत ही सत्कारयोग गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा जी, वो भी पहुंच चुके हैं, दसों के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चाहिए।